जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लय छिड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालेओ जिन कीती सो पार पया।

कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर किते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे।

गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वड्याईयां। तुद बिन सिद्धि किन्हें न पाईया, कर्म मिलै नहि ठाकुर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच सुवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। आखण औखा सच नाऊं,

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जीव परया, सैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भाव करिया।

तन महें सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल करिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पार।

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुझी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव हो संतोह जी सब दुख विसारण हारा।

जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ।

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा।

एक नचेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा

चौपाई हमरी करू हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काबहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी बसे मोरू परिवारा सेवक सिख सब

प्यासा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याहूं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है।

काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो, आदंतिक कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव

फले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, काट काट के पाट पाट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब

सब सहनो कृपाल समाधि साही साही बिरथा कोई न जाय जे आवे तुदे आही। श्लोक महल्ला पंजवां।

पाया पद निर्वाणी वाहे गुरु साहिब जी आखण जोर चुप्पै नह जोर जोर न मंगण दें

मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पिया वह एहुरा सकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मुको कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

நம்ம ஆஷ்டபதி சிம்ரவ் சிமர் சிமர் சுக பாவ கல கலேச தன மஹி மிட்டாவ சிம்ரவ் ஜாஸ் விசும்பர் ஏக நாம ஜபத அகணத அநேக வேத புராண சிம்ரத சுதாக்கியர் கீனே ராம நாம ஏக ஆக்கியர் கின்கா ஏக ஜிஸ் ஜீ பசாவ காக்கி மஹிமா கனினா ஆவ காங்கீ ஏக தர்ஸ் துஹாரு நானக உன் சங் மோஹே உதாரு சுக மணி சுக அமிரத பிரப நாம பகத் ஜனா கை மன விசராம ரஹாவ் பிரப க சிமரண கர்ப நா பச பிரப க சிமரண தூக ஜம நச பிரப க சிமரண கால பரஹர பிரப க சிமரண துஷ்மன டர பிரப சிமரத் கஷ பிகன் நா லாக பிரப க சிமரண அன தின ஜாக பிரப க சிமரண பௌ நா வியாப பிரப க சிமரண துக நா சந்தாப பிரப க சிமரண சாதக சங் சர்ப நிதான நானக ஹர ரங் பிரப க சிமரண ரித சித நௌ நித பிரப க சிமரண ஜான தியான தாத் பூத பிரப க சிமரண ஜாப தாப் பூஜா பிரப க சிமரண பின்ச தூஜா பிரப க சிமரண தீர்த்த இஸ்நானி பிரப க சிமரண தர்கஹமானி பிரப க சிமரண ஹோயே சோ பலா பிரப க சிமரண சுஃபல் ஃபலா சே சிமர ஹை ஜின ஆப் சிமராயே நானக தாக லாகௌ பாயே பிரப க சிமரண சபதே ஊச்சா பிரப க சிமரண உதரே மூச்சா பிரப க சிமரண திருஷ்ணா புஜ பிரப க சிமரண சப கிஷ சூஜ பிரப க சிமரண நாஹி ஜம திராசா பிரப க சிமரண பூரண ஆசா பிரப க சிமரண மன கி மல ஜாஹே அமிரத நாம ஹிருத மாஹே சமாயே பிரப ஜி பசை சாத கீ ரசனா நானக ஜானகா தாசன தசனா பிரப கோ சிமர சே தனவந்தே பிரப கோ சிமர சே பதவந்தே பிரப கோ சிமர சே ஜன பிரவான் பிரப கோ சிமர சே புருக பிரதான் பிரப கோ சிமர சே பே முகதாஜி பிரப கோ சிமர சே சர்ப கே ராஜி பிரப கோ சிமர சே சுகவாசி பிரப கோ சிமர சதா அபிநாசி சிமரன் தே லாகே ஜின ஆப தயாலா நானக ஜானகி மங்கை ரவாலா பிரப கோ சிமரஹ சே பர உபகாரி பிரப கோ சிமரஹ தின சத பலஹாரி பிரப கோ சிமரஹ சே மூக் சுஹாவே பிரப கோ சிமரஹ தின சூக விஹாவே பிரப கோ சிமரஹ தின ஆத்ம ஜீதா பிரப கோ சிமரஹ தின நிர்மல ரீதா பிரப கோ சிமரஹ தின ஆனந்த கநேரே பிரப கோ சிமரஹ பச ஹை ஹர நேரே சாந்த கிருபாதே ஆன தின ஜாக நானக சிமரண பூர பாக பிரப க சிமரண காரஜ பூரே பிரப க சிமரண கப ஹுன சூரே பிரப க சிமரண ஹர குணபானி பிரப க சிமரண சஹஜ சமானி பிரப க சிமரண நேச்சல ஆசன பிரப க சிமரண கமல விகாசன பிரப க சிமரண அனஹத சுனகார சுக பிரப சிமரண கா அந்தன பார சிம்ரஹ சே ஜன ஜின கோ பிரப மயா நானக தின ஜான சரணி பாயா ஹர சிமரண கர் பகத் பிரகட்டாய ஹர சிமரண லக பேத உபாய ஹர சிமரண பய சித ஜதி தாத்தே ஹர சிமரண நீச் சஹ குண்ட ஜாத்தே ஹர சிமரண தாரி சப தரணா சிமர சிமர ஹர காரண கரணா ஹர சிமரண கியோ சகல அகாரா ஹர சிமரண மை ஆப நிரங்காரா கர் கிருபா ஜிஸ் ஆப் பூஜாயா நானக குருமுக ஹர சிமரண தின பாயா ஸ்லோக தீன தரத துக பஞ்சனா காட்ட காட்ட நாத் அநாத் சரண துமாரி ஆயோ நானக கே பிரப சாத் அஷ்டபதி ஜெய மாத பிதா சோத மீதனா பாய் மன ஊஹா நாம தேர சங்க சஹாய் ஜெய மஹா பயான் தூத ஜம தல தய கேவல நாம சங்க தேர சல ஜெய முஷ்கல ஹோவை அத்த பாரி ஹர்கு நாம கின் மாஹே உதாரி அனக புன சரண கரத் நை தரை ஹர்கு நாம கூட பாப பரஹரை குருமுக நாம ஜபோ மன மேரே நானக பாவ சூக கநேரே சகல சிரேஷ்ட கோ ராஜா துகியா ஹர்கா நாம ஜபத் ஹோய சுகியா லாக கரோரி பந்த நா பரை ஹர்கா நாம ஜபத் நிஸ் தரை அனிக மாயா ரங் திக் நா புஜாவை ஹர்கா நாம ஜபத் ஆகாவை ஜிஹ மார்க இஹோ ஜாத் அகேலா தஹ ஹர நாம சங் ஹோத சுஹேலா ஐசா நாம மன சதா தியாய நானக குருமுக பரம கத பாய
छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जापत तय पार पराही अनेक बिघन जय आये संगार हर का नाम तत्काल उधार अनेक जोन जन मैं मार जाम नाम जपत पावे बिसराम हौ मैला मल कबहु न तोवै हर का नाम कूट पाप खोवै ऐसा नाम जप हो मन रंग नानक पाइए साधक संग जिह मार्ग के गने जाए न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जिह पैंडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को नाही आनू हर का नाम कह नाल पछानो जय महा पयान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर श्याम जहाँ त्रिखा मन तुझ अकरख तह नानक हर हर अमृत बरख भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन बिसराम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उधरे जान कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कह हर नाम निधान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रति रंग एक नानक जन कह बिरत बिबेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न भंग हर का नाम जन की वडयाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर तन जन कौ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुरत सब नस है संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मधे फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होम माए कार राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमी फिरे चिर जीव महा उदास तपि सरथी वै अग्न माहे होमत प्राण कनक अश्व हैवर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जापत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन सार रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबहु न बिखिया टरै जल धोवै बहु देह अनीत सुध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतत बहुमूच बहुत सियाणप जमका भौ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कूट उपाव दरगै नहीं सिजै छूटस नाही ऊब पयाल मोहे व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक भूलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को आपूना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए होमै शोरै जे को जानम मरण ते डरै साध जना की सरणी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बाल बाल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा
ਜਾਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੂਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਨਿਰ ਧਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ। ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇਵਾ ਉਦਾਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਆਪਣੇ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ, ਆਪਨ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੋਏ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ। ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਤਮ ਥਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਘਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ। ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਏ ਅਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਚੀਤ ਰੱਖ। ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ, ਬਾਰਬ ਵਿਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਭਰ ਜਿਉ ਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ। ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ, ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ। ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤਹੁ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ। ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਭਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ, ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ। ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ। ਤਿਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ, ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਤ ਪਾਵੈ। ਤਾਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ, ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ। ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਦ ਅਜਾਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੂਲਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਸਾਚ ਛੋਟ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ। ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ, ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ। ਗਰ ਤਪ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ। ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆਲ, ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਛਪਛ ਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ। ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ, ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ। ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ, ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ, ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ, ਕਹਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਜੇ ਡੋਰਾ। ਨਿਸ ਕਹੀਐ ਤਉ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ, ਕਹਾ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੂੰਗ। ਜਤਨ ਕਰੈ ਤਉ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ, ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ। ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਊਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ, ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੁਆਵੈ ਨ ਚੀਤ। ਜੋ ਬੈ ਰਾਈ ਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤ, ਬਲੁਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ। ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਤ੍ਰੋਹ, ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋਕ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀ ਜਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਪੀ ਨ ਦੇ ਦਸ ਪੀ, ਹਿਰ ਲੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ। ਜਿਸ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਨਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ, ਖਾਸ ਪੀਤ ਵਰਤੈ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਹੁਲ ਸਾਹੂ ਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ।
अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्त तिसे आगै रखे, प्रभु की आज्ञा मन मत है, उसते चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया सिंह रंग लावे, ओ बिनसै ओ मन पछुतावे। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहे तह अंध अंधार। बटाऊ सिंह जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या होमे ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असो बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बूझे मिथ्या सब कहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। विरति साकत की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बेहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम। धन धन ते जन जे खट बस्यो, हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हूँ गांड लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख ना काहू पीन। अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मै मरै। जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जान चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै। आपे आप करत न बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ती रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय, लड़ लाए थान तनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जाप नानक हरि सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहं मेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद, गुरुदेव अष्टपदी। जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जिह प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावे। जिह प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर। जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना। जिह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडावे, तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिह प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाने। जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप तो दरगह मान पावे, नानक पत सेती घर जावह। जिह प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जिह प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके। जिह प्रसाद तुझ को न पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देहि, नानक ताकी भगत करे। जिह प्रसाद अभूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी। जिह प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ आपु ने मना। जन्म तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत साध तिसे त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रखै। जिह प्रसाद करह पूर्ण बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सा सा चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पात्र है, गुरु प्रसाद नानक जस कह। जिह प्रसाद सुनै करण नाद, जिह प्रसाद पेखै बिसमाद। जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चलै, जिह प्रसाद संपूर्ण फलै। जिह प्रसाद परम गत पावै, जिह प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो, गुरु प्रसाद नानक मन जागहो।
जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल ना मन हो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास्यो राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गाव वाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातो उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लाया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होतन बेरा साध कै संग पाई नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कत हूं तावै साध संग अस थेत मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचरला है साधु कै संग अजर सहाय साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब ने सतारै साधु कै संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं काश काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर की गुण गाउ साध कै संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पहे आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संयोग साध की महिमा बेद न जानै जेता सुनै तेता बख्याना है साध की उपमा ते हो गुण ते दूर साध की उपमा रही भार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए आवर न पेखै एक बिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ शोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों बसधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाव नानक ज्यों पावक सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी ना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी सुमाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उरतारै जो अंतर नाम सर्व मैं भिखै भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कारै नानक ओह अपरस सगल निसतारै अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन दर्स परत्रे रूप ना पेखै नेत्र साध की टहल संत संग हेत करन न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद बिख्या पर हरै मन की बाशना मन ते टरै इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मध्य को ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत होवे नेह कर्म तिस बैष्णु का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा ने बाचै केवल भगत कीर्तन संगराचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावै नानक ओ बैष्णु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मन लखोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमरत बूजै मूल सो खम्मै जानै असथूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर तारै पास प्रेत मुगद पाथर को तारै सर्ब रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहु जुगत कित न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगै परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा सुसोग सदा आनंद तह नहीं बेयोग तैसा सुवरन तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेख खाटी
तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ भावै सोई फुन होग असरियो आप होए अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल सलूक उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमै उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट दपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तहरै कई कोट कब का विचारै कई कोट नवतन नाम ध्यावै नानक करते का अंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब को हिरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया श्रम माहे कई कोट परदेश प्रमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पाणी बैसंत्र कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्यर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत धारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस ने सुतारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसासत कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चैर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवरन थीवे कई कोट जख्य किन्नर पिसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच सब ते निरह सब हुते दूर नानक आप अलिपत रहया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन मैं जीवै मरै कई कोट बहुजो नहीं फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घालै थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह भाणा तह तह राखे नानक सब केश प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खो जानते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मंगे सात संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिन को हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो बिसुथार कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात ताकांत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तथ के बेते सदा निहारै एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पै सद सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै आपो ने जन को सास सास मारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करणै योग ज्यो तिस भावै सोई होग खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे धार अधार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रिया समाई प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै तां पाथर त्रावै प्रभ भावै बिन सास्ते राखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै प्रभ भावै तां पतत उधारै आप करै आपन विचारै दुहां सिरियां का आप स्वामी खिलै बिकसै अंतर जामी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होए आवै जो तिस भावै सोई करावै इसके हाथ होए तां सब किछ ले जो तिस भावै सोई करे
अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दै दिसतावै निमुख माहे चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट पशु न आवै ते सतत काल दै दिस प्रगटावै जाको अपनी करे बखसी सता का लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घाट घाट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सुहाथ करण करावण सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावे सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मैं बसै कबहू सोग हर करंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिला वनहार कबहू निरत करे बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होए बहै बाडर राजा कबहू भिखारी नीच का साजा कबहू आप कीरत में आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रभ राखै तिविहि रहै गुरु प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन तहरी लावे तिहान कबहू ताट तीरथ इसनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनक जोन भरमै परमिया नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिविन चावै ज्यों तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहू साध संगत ए पावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहुजोन परमावै धन भूमका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान काश संग न जावै बहु लस्कर मान को ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह है परवान कोट कर्म करे हों तारे शरम पावै सगले बिरत हारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब इस को सुख नाही कोय जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग नहीं चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या की करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो के शकीनों सो अपने रंग सब ते दूर सबहू कै संग बूझै देखाय करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिन सह आवे न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेश समझे आप अपे रचया सब कै साथ आप कीनो आपन बिसुथार सब काश उसका ओ करने हार उसते भिन कहो किश होए थान थन अंतर एक सोए अपने चले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए
ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੂਟ ਮਦਹਿ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ

आवन जावन दृष्ट आनंद दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच थाप उथाप अभिनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जपाय नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसुभावंत सगल संसार उदर है तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मेल लाए कृपाल गुर का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ पागे नाम जपत पावे विसराम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किश करै सु प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए हुवै सो हुए करने हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे सुमाए ओए सुख निदान उन्हों बन आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकै सिमरन उदरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जे सो प्राणे लोचै कोए तिस बिन नाहीं तेरे किश काम गात नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए ना ही मोह है प्रभ की ज्योत सगल घाट सो है तनवंता होए क्या को करबै जा सब केश तिसका दिया दरबै अथ सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बहे दातार तिस दिन हार जाने गवार जिस पुर प्रसाद टूटे हौ रोग नानक सो जन सदा आरोग ज्यो मंदर को थामे थमन त्यो गुर का शब्द मन है अस थमन ज्यो पखान नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लागत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मेल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाशो धूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाईऐ दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू ते सह चितार जो काश करे सोई सुख मान भूला काहे फिरया जान कौन बस आई तेरा संग लापट रहे ओ रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय मैं तोल लाद के बसंत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जन जाल धन धन कहे सब कोय मुख उजल हर दरगह सोए इहो वपार विरला वपार नानक ताकै साध बल हारै चरण साध के तोय तोहे पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करहो इस नान साधु प्रजाइय कुर्बान साध सेवा वडभागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक बिघन ते साधु राख हर गुण गाय अमृत रस चाख है ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किश तिसका करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय को होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किश त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न किसे बुझाए नानका जिस हो वैसो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख मानुक की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किश कोए सर्ब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बखसंद
साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरणा जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन भरन जा का नेत्र फोर, किसका मंत्र न जाने होर, आनंद रूप मंगल सद जाकै, सर्ब थोक सुनिए करता कै, राज मैं राज जोग मैं जोगी, तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी, त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया, जा की लीला की मितनाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपुनाए सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्या वैसे, तेहो गुण मैं जाको परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए, ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जन आवै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करै एक रंग, नाना बेद कीनो बिस्थार, प्रभ अविनाशी एक ओंकार, नाना चलित करे किन माहे, पूर रहे ओ पूरन सब ठाए, नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब पावन, नाम कै संग उदरे सुन श्रवण, कर कृपा जिसे आपने नाम लाए, नानक चौथे पद मैं सो जान, गात पाए रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत करम जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोय नाम जपत, ताकि गत होए आप सत किया सब सत, तापे जाने अपनी मित गत, जिस की सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत बिचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दुख कटन हार, जाकै संग तरै संसार, जन का सेवक सुगट भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै, श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत ध्यावनहार, आप सत सत सबधारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सच सत जस सुनता, शब्द सत सत प्रभ भगता, सुरत सत सत जस सुनता, बुजनहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत सुरूप हृदय जिन मान्या, करण करावण तिन मूल पछान्या, जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भैते निरपौ होए बसाना, जिस दे उपजया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको भिन ना कहना जाई, बूझै बूझन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवकी निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारै, नानक सो सेवक सास सास सुमारै, अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राखै, ताकि गत मित कोई ना लाखै, प्रभ के सेवक काओ को ना पहुचै, प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नेकी कीरी मैं काल राखै, भासम करै लस्कर कूट लाखै, जिसका शासन काटते आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बौ भांत, तिसके करत बिरथे जात, मारे न रखे अवर न कोय, सर्ब जिया का राखा सोए,
ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਸ਼ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟਾਇਆ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ। ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੁਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਬੋਲੋ ਜਸ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ। ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਣੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟਲੇ, ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਾਣ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੇ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਨਕ ਸਗਲੀ ਛਾਟ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਆਵਨ ਜਾਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਾਧ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ। ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨ ਜਿਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਤਿਹਾਵੈ। ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇਹ ਕਾਮੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੇਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀ ਕਛ ਭਰਮ। ਸਹਿਸਿਆਣ ਪਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਿੜਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਹਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੇਕ। ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ। ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕਉ ਦੇ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰ ਏਕ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤਹਿਤੇ ਨਾਸੇ। ਤਪ ਤਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਪਹਾਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਹਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸ੍ਰਵਨ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕ ਸੋਏ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ। ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ, ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦਮੈ ਉਰਤਾਰਹੋ।
करण कारण सो प्रभ सम्राथ दृढ़ कर गह हो नाम हर वथ ए तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राख हो मन माहे ना सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उठ तहवै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछ है मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भाज हर की सरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अब खद लाए सर्ब निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रभु दहो हर कै नाई दह दसतावत आवै ठाए ताको बिघन न लागै कोई जा कै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भाओ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अभिनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जनम मरै सुका चुका चा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इउं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावना छूटन हारे सिमरत शास्त वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सोतमीत कुटंब अर बनता इनते काहो हो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिस थार इनते काहो हो कवन छुटकार आसो हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पा सारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम बेसार नानक पशु ताना गुरु की मत तू लेहे आने भगत बिना बौडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपहो अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए होमै बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ सियाणप सगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी संच करो ब्योहार इहां सुख दरगै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे ओ प्रभ्याप अनक बिसथार एक ते पहे एक आराध प्राशत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया ताओ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा देवहो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सरधा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावहो चरण कमल सिउ लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावै बिरला कोए जिन चाखिया से जन तृपता ने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुभर भरे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग परे सारण आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख ब्रह्म गया ऐश पुनी सरधा सब पूरी रब रहया सद संग हजूरी जिसका सातन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मैं राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काढै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरपुर तत इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन तिहाया
साजन संत करहु एहो काम अन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी शार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए बिसराम सगल दुख का होत नास नानक नाम जप हो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुनी यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका बारन चिहन न जापत तब हरक सोक कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मो कहा किस होवत परम आपन केल आप वर तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब सेव साकत कहो हो के तठाए जब आपे ही आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन का तो डरै आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहु कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पात होता तह बिन मैल कह हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस है भूख कवन त्रिपतावै करन करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई जय सर्व कला के प्रवीण तह वेद कतिब कहा को चीन जब आपन आप उर तहर है तौ सगन आप सगन कहा विचार जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपने गत जान हो आप जह अशाल अशेद अपेद सुमाया ऊहा किस व्यापत माया आपस को आपे आदेश तेह गुण मै नाही प्रवेश आपस को आपे आदेश तेहो गुण का नाही प्रवेश जह एक कह एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथ कौन सुनने हारा बहो बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कहो आपे पहुचा जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं किनो बिसथार पाप पुन तय पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत
ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹੋਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪਹਿ ਭਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਜਹ ਅਬਗਤ ਭਗਤ ਤਹ ਆਪ ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਹ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੁ ਬਨੀ ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਯੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾ ਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾ ਵਹੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪਨੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸੁਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾ ਕੈ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੈ ਤਿਸ ਤਾਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀਤੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਨ ਹੋ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਨ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਮੀ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੁਤ ਸਹਿਤਿਆਤ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰਹੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਆਨ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰਹੁ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖੂ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵਹੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵਹੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਏ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਭਉ ਜਾਏ ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰਹੋ ਵਾਪਾਰੀ ਦਰਗਹਿ ਨਿਭ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖਹੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾ ਕੁਹ ਜਾਏ ਉਭਰੈ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਧਿਆਏ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ ਸਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹੋ ਤਿਨੇ ਹਾਲ ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲ ਅਮਰ ਪਹੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਹੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
नौनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आग्या तैसा कर्म। पौन पणि बै संतर माहे, चार कुंट दय दिसे समाहे। तिसते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल ना कबहू डोले। सर्ब कला कर खेले खेल, मोल ना पाईऐ गुण अमोल। सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहयो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो बिसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस की एह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। किस भावैता करे बिस्थार, किस भावैता एक ओंकार। अनक कला लकी नह जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कही है दूर, आपे आप आप भार पूर। अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जास आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कै मध अलिप तो रहै, जो किश कहना सो आपे का है। आग्या आवै आग्या जाए, नानक जा पावै तां लै समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ऊरै कहो किने काश करा। आप भला करतूत आतनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तां सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान। जो जानै किस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। सलोक

आओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेखो सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग हो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर करहो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वाओ नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सारन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निबही के पहमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहत निधान सर्व इच्छा ताकी पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर ना होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इस्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तात का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कूट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिनसे पै परम साधना निर्मलता की कर्म सब ते ऊचता की सुभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊचता की सुभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम
भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कथना कथि नया वैतोट काथ कथ कथि कोटि कोट कोट देदा देलै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाही।

नवा खंडा विच जानी है, नाल चले सब कोई चंगा नाउ रखाई कै जस की रथ जगले। जी तिस नजर आया वही ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ते हा कोई न सुजई। जे तिस गुण कोए करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सकै काल। नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाव सुने ईसर वर्मा इंद सुने मुखसाला हनुमंद सुने जोग जुग तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगत

कोए ति सूचे कौ जान सोए जीवड़ आप जान आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तुमाए।

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले प्रवान एक संसारिक भंडारी कलाई दीवान जेव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान उ विखै उना नदर न आवै बहुता इहु विडान आदिष्ट सै आदिश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दू जीव लख हो हे लख हो वै लख वीश लख लख गेड़ाया की है एक नाम जगदीश हे त्राह पथ पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्ला आकाश की।

मंसूर, जो न सुरति ज्ञान विचार, जो न जुगति छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म कंड काय हो धर्म, ज्ञान कंड काया को कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काढ़त घड़ी, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दान मन केते, केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाटत घड़िया बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया न जाहे, जे को कह पिछे पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै और न कोई होर, तिथै जोद महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहे, नाओ हि मरे न ठाके जाहे, जिन कह राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै केलो, करह अनंत सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तंत अनंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, विखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पाओ खल्लागन तपताऊ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िए शब्द सच्ची।

भीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंत है, अबंद है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निर्शीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है।

है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद वादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो ऊर्ध अर्धं अगंग ऊग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालुं अचेती अपेती अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेराजो चाचरी छांद जले हैं तले हैं अभीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चारपट छन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छन्त्व प्रसाद आद रूपन आद मूरत जौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराजहि अवतूत रूप रिशाल नाम टाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत जौन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हुए फैल अनुराग नाम काम हीन पेख ताम नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदय मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन

कालान काल अनुपूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे कुजं प्रयाचंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय कृशय भगवती चंद्व प्रसाद कथते के आ चित देश के आ भिज भेष के आ गंज कर मैं के आ भंज भर मैं के आ भिज लुक है के आ दित सुख है के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आ सुख वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहिन्न के के कह अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि फुल गुना है कि साहन साहेब के कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राजक रही मैं कि कर्मं करी मैं कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलिम है के परमंग कहिम है कि अकल अलम है के साहिब कलम है के हुसनल वजू है तो मामुल रजू है हमें सुलसलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनिकल तो रंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुदा है सदैवं स्वरूप है अपिधि अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है छिज है छूत है कि नरकं प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत हैं विरक्त हैं अनाश हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनित हैं अलिख हैं अधिख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटा हैं अगा हैं असंभ हैं अगम्भ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता सावल छन्त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं शरीक है मितो अमित है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छन्त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमिसल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है वह सुल निवास है के सर्वुल गवन है हमीसुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदीसुल अलेख है अलेख है हमीसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमी कुल माँ है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार छन्त्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपवनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचे जुवांग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिश विश अपंड जल थल महंत दिश विश बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक कैश दाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनचिज गात अज जना बात अन चंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अंडट पार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जिगतेश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अग्रता कृत्य अमृता मृत्य अमृता मृत्य करुणा कृत्य अकृता कृत्य धरणी तृत्य मितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत्य अमृता मृत्य अजबा कृत्य अमृता मृत्य नर नायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है निपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत्य सर्वाकृत्य करता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसो आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश
අගංජව පංජව ලක්ව පක්ව කාල දෙයාල ලේකව පේකව නාමුව කාමුවගා අටහ අනති ප්‍රමත්‍ය ජුන්නියමුන්නි නරාගෙන රංගෙන රූපෙන රෙක්කය කර්මඟ පරමඟ ගංජය ලෙක්කේ පුජං ප්‍රයාචන්ද නමස්තුල් පරනාමේශ මස්තුල් පරනාසේ අගංජුලානාමේශ මස්තුල් නිවාසේ නිර්කාමං බෙපුතේශ මස්තුල් ස්වරූපේ කුකර්මං පරනාසී සෝ ධර්මං බෙපුතේ සදා සචදානං සත්‍රං පරනාසී කරිමුල් කුනින්දා සුමස්තුල් නිවාසී අජාය බෙපුතේ ගජාය ගනිමේ හරියං කරියං කරිමුල් රහිමේ චතර චක්‍රවර්තී චතර චක්‍ර පුගතේ සොයම් පව සුභං සර්වදා සර්වජුගතේ

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को क्षय करता, श्री आशुतोष जप है दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांचत फल पावै सोई, रूप न तिसै व्यापत कोई अड़िल, सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सैस बनी जय, अर सैस फुन तीन कही जय, आद्र सुदिष्ट मीरवारा, तीर्थ तत्रव ग्रंथ सुधारा, सोइया पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कह हम एक न जान्यो, श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो, सब तो हे बकान्यो, दो

जी अस्तु गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद को अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया। सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां। शब्दोता गावहु हरि के राव मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। ऐ नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे। घर ता तेरे

धरती रह। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटाहु, जिस दिया ए वडियाइया, कह नानक सुनहु संतो, शब्द धरहु प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तिद घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत दुवास कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुध जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहु, क्या करे बेचारिया।

किया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया जानिया, आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सुवारिया।

जितंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम गुचरा।

सब तुद उपाय विवेक प्रश्न आया। लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नान जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिक मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार कर तृष्णा बहुत नाही बोलना। कन्हों तिक्की वालो निकिए तुमार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाहे त्यों चलै स्वामी। और क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन्ना मिलाहे से हर हर सदा त्यावहे। जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला सब सुहावा सबदो सुहावा सदा सुहेला। सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करहै गल्लां गल्ली किने न पाया। कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेजना जिनी हर त्याया। हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहस पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै बिन सहजै सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सह सहज यु मलीन है कि संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागू हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै सहसा इव जाए। जी हो मैले बारो निर्मल बारों निर्मल जी होता मैले। तिनी जन्म जुवै हारे आए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है ज्यो बेतालिया। कह नानक जिन सत जया कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारे आ। जी हो निर्मल बारों निर्मल बारों ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी। कूड़ की स्व पहुंचै नाही मनसा सत समाणी। जन्म रतंजनी कटिया भले से वण जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई। जी हो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याय अंतरात्म समाले। आप छठ सदा रह पर न गुर बिन अवर न जाने कोय। कह नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै पावै मुक्त न होरथै कोई। पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरमावै बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सुरबाणी। जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना सुमाणी।

बार माया, माया गुण सबिको जे ही करता खेल रचाया, जात इस भाणा ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया, ए माया जितर विसरै मुँह पजै भाउ दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया, हरे आप मुल कह मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसै विटाओ, रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जी मिले तिसनु सिर सोपिया विचो आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप मुल कह भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए, हर आस मेरी मन बन जारा, हर आस मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो, लाह खटिहो दिहाड़ी यो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा, कह नानक रास मेरी मन हुआ बनजारा, ही रसना तू अन रस रास रही, तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए, होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए, हर रस पाए पल्लै पीए, हर रस बोड़ न तृष्णा लागै आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुरु मिलिया जिसे आए, कह नान घोर अन रस अविसरे, जा हर वसै मन आए, शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी, तातु जग मैं आया, हर जोत रखी तुद विच तातु जग मैं आया, हरे आपे माता आपे पिता जिन जीव पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत रखी तातु जग मैं आया, मन चाव भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाव सकी गुरु मंदिर बनिया, हर गाव मंगल लिख सकिए सुख दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक क्यों शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया, ये नित्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी, हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई, नदरी हर निहाल आए वे संसार तुम देख देवर का रूप है, हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जावे कारि कह हर बिनवर न कोई, कह नानक नित्र अंध से सतगुरु मिलया दिव दृष्ट होई, हे श्रवण हो मेरे हो साचे सुन नैनो पठाए, साचे सुन नैनो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी सचल कविडानी ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुन नैनो पठाए, हार जियो गुबांदर रख कै वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पाउ नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनिक न दसवां द्वार दिखाया, तहन एक रूप नाव नव निध तिस्तंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारा जियो गुपांदर रख कै वाजा पवन बजाया, ओ साचा सोयला साचे कर गावो, गावो ता सोयला कर साचे जिथे सदा सच त्यावे, सचो त्यावे जा तुद भावे गुरमुख जिना बुझावे, यो सत्सवना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे, कह नानक सच सोहेला सच्चे कर गावे, आनंद सुनो।

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लिखे एक गल और हम चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया।

बलिहारी कुद तुवसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिर सवाल जिन कीती सो पार पया कहो नानक।

अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार जिते महावक अनुसार सतगुरु जी ने बड़िया महान बख्शिशा रहमता कीतिया हन अमृत वेले की दात बख्शी है सो आप जी ने बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल आसरी दिवाद कीर्तन सर्व किए हैं जी दस रहे पासों सेवा निभाउंदे आ कीर्तन करदे आ हाजरी भरदे आ हुई फुलां दी खिमा बख्शदे नी सतसंग जीओ आ हुण समा होया है जो साहबां ने अमृत वेले हुक्मनाम बख्श किया है अति सत्कारयोग भाई साहब बजसवीर सिंह जी खुश दिल तिना पास सरवण करिए जी हुई फुलां दी खिमा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

रख ले हर जियो, हर नाखश मार पचाया। गुरमुखा नू परती तो है हर जियो, मन मुख परम पुलाया। हर जिए तेरी वडियाई, भगतां की पैज रख तो स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ। भगतां नू जम जो हो न साके, काल न नेड़े जाए, केवल राम नाम मन बसिया, नामे ही मुक्त पाई। रिद सिद सब भगता चरनी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखानु परतीत न आवी, अंतर लोभ सुआव। गुरमुख हृदय शब्द न भेदेओ, हर नाम न लागा भाव। कूड़ कपट पाज ले जासी, मन मुख फीका अलाओ। भगता विच आप वरतदा, प्रभ जी भगती हूं तू चाता। माया मो सब लोक है तेरी, तू एको पुरख बेदाता। हों मैं मार मनसा मन सुमाणी, गुर कै शब्द पिछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सुवारण हारा। उना किरेस करे सुवे गुच्छे, जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किन्ने न पाया, मन मुख पौक मुए बिल लाई। आवे जावे ठौर न पावे, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सोए अमृत पीवे, सहजे सच समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म न छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े तै वाद वखाणे, बिन हर पत गुआई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे,

दर गुरु दे दर ते साचे सदा थैर रहण वाला गुरु दा जो दर है उस दर ते सचियारा दा मतलब है सचियार सचियार दा अर्थ है जी सुरखरू पावे अस्पष्ट ओ जन्म मरण तो छुट जांदे सुरखरू हो जांदे ने उन्हां दा जमना मरना मुक जांदा है। एक बारी फिर सरवण करो जिन हर मन वसिया जिन्हां ने गुरु सोबत विच बैठ के हरि प्रभु नूं अपने मन विच प्रेम नाल उन्हूं जपदियां आराधदियां सिमरदियां वसाया उह सच्चे दे दर ते सुरखरू हो के जांदे ने। उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई ना मेटण हारा हर जुग विच युग कोई भी होवे समा कोई भी होवे उना दी हर जुग विच शोभा हुंदी है ते उना दी शोभा जड़ी है ना ओ भी सदा ही रहण वाली है। नानक तिन कै सद बलिहार दास नानक आप उना तो सदा ही कुर्बान सदके जाइए जेड़े करते दा चिंतन करदे ने ते करते नू अपने हिरदे विच वसाउंदे ने। नानक तिन कै सद बलिहार जिन हर राखिया उरधार जिन्हां ने हरि प्रभु नू परमेश्वर नू अपने हिरदे विच टिकाया वसाया। धन गुरु अमरदास सचे पातशाह समुचे शब्द विच दोने पक बयान करदे ने कि मनमुख बंदा जेड़ा मन दा मुरीद है मन पाउंदा खान वाला मन पाउंदा लिबास पहरावा पाउण वाला मन पाउंदे कर्म करन वाला मन दा मुरीद मन पिछे लगन वाला गुरु दी शरण पैण तो बिना निरंकार दी उस्तत ते सिफ तो सलाह करन तो बिना वो दुख विच ही जीवंदा है ते दुखां विच ही आखर मर जांदा है। इहदों बाद मरन तो उहदा जन्म ते मरण जिहड़ा है वो बनिया ही रहिंदा है इह गेड़ मुकदा नहीं। ते दूजे पासे जिहड़े गुरमुख प्यारे गुरु दी शरण पै के परमात्मा दा नाम अपने हिरदे विच मन विच वसाउंदे ने ऐसे गुरमुख प्यारियां दा जन्म मरण दा गेड़ मुक जांदा है। बार बार जम्मन मरण ना तिन कौ उहनां नूं फिर जन्म ते मरण नहीं सताउंदा नहीं व्यापदा उह जमदे मरदे नहीं हन। ऐसे गुरमुख प्यारियां तों साहिब समझाउंदे गुरु अमरदास सदा बलहार जांदा मैं नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राखिया उरधार हरि प्रभु नूं अपने हिरदे विच जप जप के वसाया टिकाया। भुला चुकां दी खिमा राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आई शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कै नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया।

कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। सच नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टों, जिस दिया ए वड़े आईया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, सच नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जन को से नाम हर के लगे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनाद वाजे, अनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संतापी उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नित उठ उठ जूज करी जय, अंगीकार करो रख लेवो गुरपूरा काड कड़ी जय। अंतर अगन सबल अत बिखिया हे शीतल।

शिव घर जाई गुरमुख जी प्राण उपजै। गुरमुख शिव घर जाइय गुरमुख नानक सच सुमाइय। गुरमुख निज

हो अंदन हरे नाम कीर्तन करो, सतगुरु मो को हरे नाम बताया, हो हर बिन खिन पल रह न सको रहाओ। हमरा श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हो हर बिन रह ना सको हो एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संगारे, सतगुर मुँह को हर नाम दिवाया। रहाओ पथ में त्यागी हूँ मैं प्रीति, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने, सहज गुफा में आसन बाध्या, ज्योत स्वरूप अनाहद वाज्या, महा आनंद गुरु शब्द विचार, प्रेस्यो राती तन सुहागण नार, जन नानक भोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार, जन्म न मरे न आवे न जाए, हर सेती ओहो रहे समाए। आसा महला पंजमा, निज भगती सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जित ग्रह बसै सो ग्रहो सो भावंता, गुरमुख पाई किनै विरलै जनता, सुकरणी कामन गुर मिल हम पाई, जज काज परथाए सुहाई। रहाओ जिचर वसी पिता कै साथ, तिचर कंत बहु फिरे उदास, कर सेवा सत पुरख मनाया, गुर आणी कर महता सर्व सुख पाया, बतीस लखनी सच संतत पूत, आज्ञाकारी सुगड़ स्वरूप, इच्छ पूरे मन कंत स्वामी, सगल संतोखी देर जिठानी, सब परवार माहे श्रेष्ठ, मती देवी देवर जेसठ, तन सो ग्रहो जत प्रगटी आए, जन नानक सुखे सुख विहाय। आसा महला पांजमा, मता करो सो पक्कन न देई, सील संजम कै निकट खलोई, वेस करे बहुरूप दिखावे, ग्रह बसन न देई वख वख परमावे, घर की नायक घर वास न देवे, जतन करो उर्जाए प्रेवे। रहाओ तुरकी भेजी आई आमर, नौ खंड जीते सब थान थनंतर, तट तीरथ ना छोड़े जोग सन्यास, पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास, जह बैसो तह नाले बैसे, सगल भवन में

अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सकदारी। सोइना रूपा तुझ पहदाम, सील बिगाड़ियो तेरा काम। जाको दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते लई छुड़ाए। साध संग मिल हर रस पाया, कह नानक सफल ओहो काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन, अत सुंदर बिचखन तू रहाओ दूजा। आसा महला पांजमा, एक तुके दो जीवत दिसै तिस सर पर मरना। मुआ होवे तिसने चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे। हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुरसब्दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटुकी बेंस विनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज करवासा। ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे न काला। परमत फिरे तन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर का माल, नानक।

मूल संभाल हो अचेत गवारा, इतने को तुम क्या गर्दे रहाओ, तीन शेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान, बिष्टा अस्त रक्त प्रेते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान, एक वस्त बुझेता हो है पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक, कह नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाइये हर पुरख सुजान, आसा महला पांजमा एक तुक्के चौप दे, इत कड़ी दिनस मुँह को बहुत दिहारे, मन न रहे कैसे मिलियो प्यारे, इक पल दिनस मुँह को कभू न बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा

पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी भ्रम भ्रम रोवै हाथ पिछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजमा हर सेवा मैं परम निधान हर सेवा मुख अमृत नाम हर मेरा साथी ओट।

रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कह नानक गुण गाये नीत मुख उज्जल होए निर्मल चीत आशा महला पांच।

पुरहाओ तृप्त अगावन साचै नाए अड़सठ मंजन संत तुराए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कौगर दीनो दान आसा महला पांजमा बुद्ध प्रगास पई मत पूरी ताते बिनसी दुर्मत दूरी ऐसी गुरमत पयाले बुढ़ तिकोर अंध कूप मह निकस्यो मेरे पाई रे रहाओ महा अगह अगन का सागर गुर बोहत तारे रतनागर दुत्तर अंध बिखम इह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कछ

आन रसाखिन महल लह जाता। हर रस के माते मन सदा आनंद, आन रसा मह व्यापे चिंद। हर रस पीवे अल्म अल्म सत मतवारा, आन रसा सब हो छेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही न जाए, हर रस साधु हाट समाए। लाख करोरी मिले न के हे, जिसे प्राप्त तिस ही दे। नानक चाख पै विस्माद, नानक गुरते आया साध। ईत ऊत कत छोड़ न जाए, नानक गीता हर रस माह। आसा महला पांचवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटके दुर्मत अपनी तारी, होए निमाणी सेव कमावे। ता प्रीतम होव है मन प्यारी, सुन सुंदर साधु वचन उदारी। दुख भूख मिटे तेरो सहसा, सुख पावे तू सुख मन नारी। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, आत्म शुद्ध।

रहाओ पाला ताऊ कछु ना व्यापे राम नाम गुन गाए डाकी कोचक कछु ना लागे चरण

नानक सहजा दुख मिटाए। आसा महला पांजमा औखड खायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ। ताप गया बचन गुरु पूरे, अनद पया सब मिटे बसूरे। रहाओ जीय जंत सगल सुख, पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया। आसा महला पांजमा बांछत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहो न बाला बुढ़ा पाई। रहाओ नानक दास साध सरणाई, गुर प्रसाद।

मत आए बहुत उतारे गहर गंभीर व्यंत गुसाई अंत नहीं किच पारा वारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभु को नमस्कार। आसा महला पंजमा तू ब्यांत अवगित अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जानत कर है चतराई जा सब किछ तुझे मजार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार देहो समत सदा गुण गावा मेरे ठाकुर अगम अपार रहाओ जैसे जनन जठर मह प्राणी ओहो रहता नाम आधार अनद करे सास सास समार ना पूहे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इन प्यो प्रीत निवार चरण कमल से भी रद अंतर गुर पूरे के आधार गृहो मंदर महला जो दिसै ना कोई सिगा संगार जब लग जीव है कली काल में

चित लाइया, उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याय रहाओ। महा विचित्र सुंदर आखाड़े रण में जीते पवाड़े, हो मारो हो बंदो छोड़ो मुक्ते एव बबाड़े, आया हुक्म पार ब्रह्म का छोड़ चल्या एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत भौ करता करणे हार न जाने, उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पिछाने, नांगा आया नांगो जासी।

चिंता, जाको दया तुम्हारी होई से, सहा पले भगवंता, परम मोह त्रो सब निज से। जब

जह को न राख वो किस पह करे पुकारा निंदक की गत कतु नाही खसम ए वह पाणा जो जो नंद करे संतन की त्यों

कोह नानक संत हर राखै निंदक दिए रुड़ाई आसा महला पंजमा बाहर तोए अंतर मन मैला दोए ठोर अपने खोए इहा काम क्रोध मोह व्याप्या आगे मुस मुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा वर्मी मारी सापन मरई

जैसा खोटा डबुआ नदर सराफा आया अंतर जामी सब किछ जाने उसते कहा छपाया कूड़ कपट बंच मुनिया दा बिंस गया तत्काले सत सत सत नानक कहा अपने हृदय देख समाले आसा महला पांजमा उद्यम करत होवे मन निर्मल नाचे आप निवारे पांच जना लै वस्त राखे मन में एकंकारे तेरा जन नृत करे गुन गावे रबाब पखावज ताल कुंगरू अनहद शब्द बजावे रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिजावे राम नाम जप हृदय जापे मुखते सगल सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे मन तन अर्प तरे गुर आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने देखे लाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे ऐसी नृत नरक नवारे नानक गुरमुख जागे आसा महला पांजमा अदम चंडाली पई ब्रह्मणी सूदी ते सृष्टाई रे पाताली आकाशी सखनी लहबर बुझी खाई रे घर की बलाई अवर सिखाई मूसा देख डराई रे अज कै वस गुर कीनो कहर कुकर तिन्हे लगाई रे रहाओ बाज थुनिया छपरा थम्या निग्रया।

जाकै सिमरण जमते छुटियै हलत पलत सुख पाइयै सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइयै भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाठे छिजे न जाए किछ पौ न व्यापै हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाई इत उत राखन हारे प्राण मीत हीत तन मेरा नानक सद बलिहारे आसा महला पांजमा जा तू साहेब ता पौ के हा हो तुद बिन किस सलाही एक तू ता सब किछ है मैं तुद बिन दूजा नाही बाबा बिख देख्या संसार रखिया करो गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार रहाओ जाने बिरथा सवा मन की होर किस पह आख सुनाइए बिन नावे सब जग ब्योरिया नाम मिले।

वर्तै सदा सदा तेरी आस। जे देह वडियाई ता तेरी वडियाई, इत उत तुझे त्याओ। नानक के प्रभ सदा सुख दाते, मैं तान तेरा इक नाओ। आसा महला पांजमा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, एहो महारस जन है पियो। जन्म जन्म चूके पै पारे, दुर्त बिनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन

राज तुम आप कियो। दृढ़ो कर चरण गह प्रभ तुमरे सहजे बिख्या पई कियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा इहो।

पाई जत प्रभ अपने मेल लियो तांसो काल जुग साध संग कीर्तन गाय नानक नाम अधार हियो आसा महला पंजमा आगे ही ते सब किछ हुआ अवर न जाने ज्ञाना भूल चूक अपना बारक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मुहे दीन को राख लिया काट्या रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया रहाओ अनेक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुक्त पै अंध कूप महाकोर ते बाह पकड़ी गुर काड लिए निरपौ पै सगल पौ मिटिया राखे राखन हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कारज सगल सवारे गुण निदान साहेब मन मेला शरण पया नानक सोहेले आसा महला पांजमा तू विसरता सब को लागू चीत आवेता सेवा अवर न को दूजा सूजे साचे अलख अपेवा चीत आवेता सदा दयाला लोगन क्या विचारे बुरा भला कहो किसने कही किसनों कही है।

पंजमा कर कृपा प्रभ अंतर जामी साध संग हर पाये खोल त्वार दिखाले दर्शन पुनरप जन्म न आये मिलियो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरो रे पार ब्रह्म जन हृदय अराध्या ताके संग तरो रे रहाओ महा उद्यान पावक सागर पे हरख सोग मह बसना सतगुर पेट पया मन निर्मल जप अमृत हर रसना तन तन थाप कियो सब अपना कोमल बंधन बांध्या गुर प्रसाद पै जन मुक्ते हर हर नाम अराध्या राख लिए प्रभ राखन हार जो प्रभ अपने पाणे जो पिंड सब तुमरा दाते नानक सद कुर्बाणे आसा महला पांजमा मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनुग्रह पयोरी महा मोहनी तुद न व्यापे तेरा आलस कहा गयोरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संजम कौन छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो सम्राट वरन न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोठ मह पई नकारी निर्मल बरन बुन्योरी महामंत्र गुर हृदय बसियो आचार्य नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई एक ओंकार सत गुर प्रसाद राग आसा कर सतमा महला पांचमा।

हमरी काल प्रभ आप सिगार सवार नहार रहाओ दूजा बवंजा आसा महला पांजमा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुक्का निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रिय सेज तरी कान कटन ते छुट छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा अनद विनोदी खसम हमारा मस्तक पाग मैं पर कर आया थिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पांजमा साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अल्पतर हो जैसे जल मह कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जिया संग प्रभ अपना करता दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की एहो मन राला नानक जन गुरु पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पांजमा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया बस्तर उड़वलिया तेज सुखलिया मन गर्बलिया रहाओ कलय कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बिना लय तारण गडलिया रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद बिक्रिया माया छलिया विकार बिखलिया शरण नानक प्रभ पुरख दयलिया आसा महला पांजमा एको बगीचा पेट कन करिया अमृत नाम।

रक्षा के तुमका बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल वनस्पत आन जड़ाई, सगली पुली ने फल ना काई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तन माया। आसा महला पांजमा

पांजमा तीर्थ जाओता हो हो करते पंडित पूछोता माया राते सो स्थान बताबो हो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त महचंत उदास अहंकार कर्म करत जिय को जंजार प्रभु कृपा ते मन बस आया नानक गुरु।

मन तन अंतर तुझ तिहाई तुमरै लवै न कूलाई कहो नानक नित एवै तिहाई गत होवै संतह लग पाई आसा महला पांजमा उठत बैठत सोवत त्याइय मार्ग चलत हरे हर गाय सर्वन सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए अनंदा दुख रोग मन सगले हरे हर गाय सर्वन सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए अनंदा दुख रोग मन सगले लथा रहाओ कारज काम बाट काट जपी जिए गुर प्रसाद हम अमृत पीजे दिन सो रैन हर कीर्तन गाये सो जन जम की वाट न पाये आठ पहर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाई आसा महला पांजमा जाके सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास आनंद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना।

सगल समग्री जाकै सूत परोई, घट घट अंतर रविया सोई। ओपत पर लियो खिन मह करता, आप अलेपा निर्गुण रहता। कर्णिक रावण अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पांजमा, कोट जन्म के रहे पवारे। दुलब देहे

गहे कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एहो सफल पया कह नानक प्रभ करी मया। आसा महला पांजमा सतगुर अपना सद सदा समारे गुर के चरण केस संग चारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर न आवस कामा झूठा।

गुर पार ब्रह्म परमेश्वरी आप, आठ पहर नानक गुर जाप। आसा महला पांजमा, आपे पे डूब स्थारी साख, अपनी खेती आपे राख। जात कत पेख्यो एक कै ओही, कट कट

भाव मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन तारी जप तप संयम करम न सादा नाम प्रभु।

पांचवा हर हर अखर दोए एह माला जपत जपत पै दीन दयाला करो बेनती सतगुर अपनी कर कृपा राखो हो सरनाई मोप देहो हरे हर जपनी रहाओ हर माला और अंतर तारे जन्म मरण का दुख निवारे हृदय समाले मुख हर हर बोले सोजन इत उत कत है न डोले कह नानक जो राचे नाए।

सेवक सधी मुक्ता, जो किछ करे सोई पल जानके, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ। सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहा व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिस को चिंता सुपन नाहे। कोह नानक गुरु पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पांजमा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम कहो कैसे नेरा। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोह निर्मल को लेहो उधारी रहाओ।

क्रोध अहंकार बगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम भव जोन पवाया, असर भगत हर चरण तियाया, बंधन अंत

के कर गावन कोरु वे को हस हस पावन रहाओ। बाल व्यवस्था ते बिरताना पहुँच न मुक्का फिर पछताना। त्रिगुण में वर्त

खबर न जानी पूर पया बहुर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन अनद तरोकरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहा करोरी। रहो कर्म है अमृत आनन सार्यो खिसर गयो तूम पर डार्यो साध मुहे लादी अहंकारे दोष नहीं प्रभ करणे हारे साध संग मिटे परम अंधारे नानक मेली सिरजन हारे आसा महला पांजमा चरण कमल की।

पांचवा मन तृप्ता न मिटे जंजाल प्रभ अपना हुआ कृपाल संत प्रसाद भली बनी जाके ग्रह सब किछ है पूरन सो पेटिया निरपै तनी रहाओ नाम।

मिट गई पाल मन सहज समाना, नानक पाया नाम खजाना। आसा महला पांचवा, ठाकर सियो जाकी बन आई, भोजन पूरन रहे अगाई। कछु न थोरा हर भगतन को, खात खर्चत बिलचत देवन को। रहाओ जाका तनी अगम उगसाई, मानुख की काहो केत चलाई। जाकी सेवा दस अष्ट सदाई, पलक दृष्ट।

देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजमा, अंदन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाहे मिठाई। सोचत साचत रहन बिहानी, अनेक रंग माया के चितवत, कभू न सिमरो सारंग पानी। रहाओ ब्रह्म की छाया, नह चल गृह बांध्या, काल कै फांस सकत सर सांध्या। बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड़ नह चल कर पाया, साध संग जप्यो हर रा।

साई सुहागण जो प्रभ पाई तिस कै संग मिलियो मेरे पाई। रहाओ दासन दासी की पनहार उनकी रैन बसे जी नाल। माथे पाग तपावो संग मिले स्वामी अपने रंग। जाप ताप देवो सबने माँ कर्म धर्म अर्पो सब हो माँ। गर्भ मोह तज हो वो रेन उनके संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आरादो दिनस रैन एह सेवा साधो। पै कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बखसंद। आसा महला पांजमा

प्रीत सद निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण कट कट आधार रहाओ, प्रभु की प्रीत पै सगल।

मन पानी बड़ परवार पूत अरतिया मुहे पचे पच अंधा मुआ जिन्हें उपाहा तिन्हें बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राज माल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पांजमा इन सियो प्रीत करी कनेरी जो मिलिए तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छूटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी बधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोहे बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुर प्रसाद मैं खोटी डिठी अगरत उसके वडे ठगाओ छोड़े नाही बाप नमाओ मेली अपने उन ले बांदे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया अनंग।

की पगसार। संत रहे तो सुनो मेरे भाई, उआ की महिमा कथन न जाई। रहाओ बर्तन जाके केवल नाम, आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सतर जाके एक समाने, प्रभ अपने बिन अवर न जाने। कोट कोट अग

चली ताका संग बाछे सुरदेव अमोग दर्श सफल जाकी सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मुहे संत है टहल दी जय गुणतास आसा महला पांजमा सगल सुख जप एक है नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महापवित्र साधका संग जिस पेट तला गय प्रवरंग गुर प्रसाद ओए आनंद पावे जिस सिमरत मन हुए परगासा ताकि गत मित कहन न जावे रहाओ वर्त नेम मजन तिस पूजा वेद पुराण तन सिमरत सुनीजा महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम प्रगट्यो सो जन सगले पवन पतित पुनीत ताकी पगरेन जाको पेट्यो हर हर राये ताकी गत मित कथन न जाए आठ पहर कर जोड़ते आयो उन

पांचवा आठ पहर उदक स्नानी साधी भोग लगाए सुज्ञानी वृथा काहू छोड़े नाही बहर बहर तिस लाग है पाई साल ग्राम हमारे सेवा पूजा अर्चा बंदन देवा रहाओ घंटा जाका सुनिए चौकुंठ आसन जाका सदा बेकुंठ जाका चवर सब ऊपर चुले ताका तूप सदा पर फूले काट काट संपट है रे जाका अपग सभा संग है सादा आरती कीर्तन सदा आनंद मेहमा सुंदर सदा ब्यांत जिसे प्रापत तिसी लहना संत चरण ओह आयो सरना हाथ चढ़ियो हर साल ग्राम कहो नानक गुर तीनो दान आसा महला पांचवा पांच पदा जह पैडे लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दुरारी सतगुरु पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते दीठी जम का मार्ग दूर रहा रहाओ जह लालच जागाती काट दूर रही ओह जानते बाट जह आपटे बहुत कन साथ पार भ्रम के संगी साध चितर गुप्त सब लिखते लेखा भगत जना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सतगुर पूरा वाजे ताके अनहद तूरा आसा महला पांचवा दो पदा पहला साधु संग सिखायो नाम सर्व मनोरथ पूरे काम बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने कर्ण करावन शरण परया गुर प्रसाद सहजे कर पाया मिटया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर परे पंडार।

आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे, पूजय संत हर प्रीत प्यारे रहाओ। जाके मस्तक लिखिया पाग, कहो नानक ताका थिर,

गुरमुख नाम लगे से सुहया वर्त नेम कर थाके। पुनः चरना तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोह

माया मोह सबो जग बादा हो मैं पचे मन मुख मुराखा गुरु नानक बहा पकर हम राखा। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु बाबा जी। पूरी चुका माफी दो सच्चे पाशा है, वाहेगुरु वाहेगुरु।

चार दिहान आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना जो में माणा काहे गर्व की जय। जित से भी दरगे सुख पाइय नाम तिसे काली जय। आग हुकम ना चले मूले सिर सिर क्या बिहाड़ा साहिब सिमरहो मेरे पाइयो सपना यो प्याणा। जो तित भाव समृत सोथी है इंदड़ा यो संसारो जल थल मैयल रो रेहा सातड़ा सिजन हारो साचा सिजन हारो अलख या पारो ताका अंत न पाया। आया तिनका सबल पया है एक मन जिन्नी ती आया ताए ताए उसारे आपे हुक्म सवार।

राम सुहागण सच सवार हारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वड़ हंस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहिब कुदरत जानो वा सतड़ा दूर ना पाली है घट घट सबद पछाणो वा सत सबद पछाणो दूर ना जानो जिन ए रचना राच नाम धियाए का सुख पाए बिन्ना वै पिड़काचे बिन थापे जिन था

बाबा आया है उठ चलना, बाबा आया है उठ चलना, अद पंदा है संसार हुआ, सिर से चतड़ लिखिया दुख सुख पूरब विचार हुआ, दुख सुख दिया जेहा किया सो निभ है जी नाले, जे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले, आप निरालम धंधे बांधी कर हुकम चढ़ावन हारो, अजकल कर दिया काल व्यापे दूजे भाई विकारो, जम मार्ग पंतना सूजई उजड़।

बाबा आया है उठ चलना, यो जग झूठ पसार होवा, सचड़ा कर सचड़ा से भी है, सच खरा सचियार होवा, कूड़ लब जा था ना पासे, अग्गे लह ना ठाओ, अंतर आओ ना बैसो कहिए, जो सुइए कर काव, जम्मन मरन वड्डा बेछोड़ा, बिनसे जग सबाए, लब संदे माया, जगत बुलाया, काल खड़ा रुवाए, बाबा आवो पाइयो।

पालन खंजनो सतगुरु के बेनती पाई हर प्रभु सुनी अरदास जियो हर कार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कैसा वास जियो मेरे सिख सुनो पुत पाइयो मेरे हर बाणा आओ मैं पास जियो हर बाणा गुर पाया मेरा हर प्रभु करे सा वास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभु पाणा पावे आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मेलावे तुसे पुत भाई परवा

आओ करो प्यारे साथ समझियो, पापा सारे ही स्वर्गवासी माता दलजीत कौर जी मुटर उन्हां दी अंतिम यात्रा तो उपरंत गुरु दरबार दे विच सज बैठे हां। सतगुरां दा अपना विधान इको दी खेड है कि मरण लिखा है मंडल में आए, जिहड़ा भी संसार विच आया है उन्हें समा पा के संसार तो जाना है। ये उस मालक प्रभु की अपनी खेड है, कदों जाना है किन्नी उम्र बख्शिश की है एदी कोई गारंटी नहीं। ये गुजी गल मालक ने अपने कोल रखी है, आई आग्या पिरहों बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया। जिस वेले भी उस मालक दा सदा आ गया है, मनुख दे कोल कैसी उम्र है, बचपना जवानी बुढ़ेपा मौत रूपी काल ने अपनी ड्यूटी निभानी है। आई आग्या पिरहो बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया, जीव आत्मा दे नाल कोई विचार नहीं होंदी है। दूजी पासे विखी माता जी ने एक सोहना जीवन बतीत किया है, पूरी उम्र भोग के गए हैं, पिछे बहुत वड्डा परिवार छड़के गए हैं। सत्कारयोग भाई साहब भाई जगदीप सिंह जी अते होर भैन भरा जिन्हां ने माता जी नूं अज अलविदा आख्या है, इस संसार तो कोई भी विछोड़ा नहीं चाहुंदा है, क्योंकि जिहड़ा विछोड़े दा बैराग है एक बहुत वड्डा बैराग। मनुख एक लई दो दिन लई किथे जांदा है परिवार तो दूर, तां आस हुंदी कि वापस मुड़ आना है, पर जदों पता लगदा है सदीव काले विछोड़ा है तां फिर बैराग आना जरूरी हो जांदा है। तां ही भगत कवि जी ने कह दिता कि भाई मोहे बैराग पे उहो जिहो आए कहां गए। सो आओ इस शब्द के नाल जुड़ना करिए, मोहे बैराग पयो इहो जिहो आए कहां गए।

सरस्वत, हर माता पिता अपने परिवार प्रति सदा ही मालक दे अग्गे अरदास करता है, सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सदह करकार। ये शब्द पढ़ के आप दीवाना की समाप्ति कर लगे हाँ। गुरु प्यारे सतसंग जी, माता पिता का ऋण करजा मनुख अपनी उम्र दे विच नहीं ला सकता है, क्योंकि माता पिता दे राही इस संसार दे विच आया। जिन्हां ने फिर सेवा कर ली है वह मन दे विच फिर पछताउंदे नहीं। इस करके ये जीव जिंदे जी अपने माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि उस वेले लोड़ होंदी बिरद अवस्था विच पहुँच के जी किधरे मनुख उस वेले मुख मोड़ लवे, फिर सतगुरु पातशाह कहिंदे ने कि भाई एक करजा ही बन जाना है। जे किधरे जिंदे जी सेवा कीती है फिर मन दे विच कोई मलाल नहीं है। सो आओ, हर माता पिता अपने परिवार प्रति कैसी भावना रखते हैं, सो आओ इस पढ़ के दीवाना दी समाप्त।